गया है। इसने कहा रानी और उसने कहा बेटा, दिन कुछ नया का महल नहीं सकते हैं। वहां भी का मांगने करने वाले जरूर करने लगे। वहां रोज भोटे का

देखो करने वाले, देखो आशीर्वाद की गणपति का स्मरण करने वाले, दे धन्यवाद की गणपति की आशीर्वाद हो करने वाले, जय हो श्री गणपति देवता।

सर्वतृत समायुक्तम सुगंधिम विरमलम जलम आजपनिम्यादत्त गृहाना परमेश्वर पापोहम पापकर्माहम पापात्मं पुंडरीकाक्ष त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि पुनातु पुनातु पुनातु पुनातु श्री परमात्मने नमः। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्योयो न प्रचोदयात् इदं गात्रेदं नामम। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्योयो न प्रचोदयात् इदं गात्रेदं नामम। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्योयो न प्रचोदयात् इदं गात्रेदं नामम। ओमेकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओमेकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते।

0: के जोड़ी मोटी, हरे राम लल्ला देख काहे ताल भात और रोटी।
1: शिवी से
0: चली गल
1: आवर टीम नाउ नियर आम यार राइट नाउ
0: ताल भात
1: ऑन वेकेशन फ्रॉम न्यूयॉर्क।